अंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके,

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए,

कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

रेडियो चुनौर की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मजेदार शो व्हाट्सएप आप एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूं आपका साथी जॉक्सिस, और याद रखिए आपने फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना है रेडियो चुनौर के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को। फॉलो शेयर फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर, साथ ही साथ कमेंट्स में प्यार जरूर दें। दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 FM, आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से आपको मिलेगा ये फायदा कि रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का आप मजा लेंगे दुनिया के किसी भी कोने में लाइव। हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 FM, लॉग इन टू www.radiochennai.com। मैं हूं जॉक्स, ये है मजेदार शो सबसे डायरेक्ट।

0: Kom här, ja.
1: Radio Chennai. Radio Radio Chennai. Weather update. Weather update.
2: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ जॉक्सियस और ब्रदर आज का वेदर कैसा होगा मौसम क्या होगा डल डल या होगा ऑसम चलिए

0: बताते हैं। आज के मौसम की जो करवट है वो इस और बैठनी है कि सूरज पूरा दिन चमकेगा, फायर नहीं वाइल्ड फायर बनकर। मतलब इतनी चमक, इतनी दमक कि पुष्पा भी गर्मी से जुला जाए। आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस। सूरज पूरी तपिश के साथ साथ अभी की बात करें तो यूवी इंडेक्स वीक पर ह्यूमिडिटी 58%, विंड स्पीड 2 किलोमीटर्स, विजिबिलिटी 9 किलोमीटर्स। आज का सनराइज हुआ 5:31 पर, आज का सनसेट होगा 7:44 पर। जी हाँ, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन, रेडियो चना 90.4 FM, एंटरटेनमेंट गारंटीड सारा। मैं हूँ चौकसूस, यह है मजदार शो, सबसे रह धड़काते रहो।
1: तू दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

0: काका असली तो है ना? इतनी
1: सुन पुष्पा, तेरे भाई की बेटी ने सोने की चेन ली है, कह रही है पैसे मेरे पुष्पा चाचा देंगे।
2: तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
3: समझ गया भाव, पैसे दे के आता हूँ।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।
2: जी हाँ, जो वायरल होता है व्हाट्सएप पर आ ही जाता है। व्हाट्सएप शो का सेगमेंट वायरल ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि कहत ज्ञानी और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जानी वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। जी हाँ, वायरल ऑन व्हाट्सएप पर एक ऐसी चीज जो कि लोगों ने देखी और उनके कान खड़े हो गए। जी हाँ, ताजमहल जो कि एक जाना माना जीता जागता लोगों की आंखों को बाता मौजजा है, उस पर जो कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग का काम कर रहे थे एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एक मीनार में घुस गए और वहां पर वीडियो भी रिकॉर्ड की। वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने आशंका जताई, बताया कैसे क्यों, अगर ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो एक वर्कर वहां पर गया क्यों और ऐसा हुआ क्यों, भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो वायरल रहा और आ गया व्हाट्सएप पर। अब ये है कि ताजमहल तो ठीक है, लेकिन पप्पू बेचारा नाचना नहीं जानता। आप क्या जानते हैं, हमें जरूर बताए, अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाए। 8899904904 नंबर 8899904904। हर दिल की धड़कन, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज, डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मिलूंगा ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से। और इस फ्रीक्वेंसी पर मेरी जान से रहक धड़काते रहो।

0: bunch of zoos.
1: Kom maar, ja.
2: Dat is de Radio Channel 90.4 FM. Was daar show was het mij hoe jouw zus Siri Amanaji Yatra 2026. Ja, 37% इजाफा जो देखा गया है डिवोटीज में जो भी यात्रा से जुड़ने वाले लोग हैं जिनकी तादाद 37% से बढ़ चुकी है इस साल आंकड़ों की बात करें तो महज 12 दिन में तकरीबन 3 लाख का नंबर क्रॉस कर चुकी है यात्रियों की वही आप सबसे गुजारिश है कि एसओपी गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करें और साथ ही साथ इस चीज का ख्याल रखें कि अगर आप यात्रा पर हैं तो जो भी रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस हैं उनको मद्देनजर ही अपनी यात्रा आगमन करें आज श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जा रहे लोग उन्हें जो टेम्परेचर मिलेगा वो श्री अमरनाथ जी केव के आसपास और एडजॉइनिंग एरियाज में मैक्सिमम रहेगा 13 डिग्रीज मिनिमम रहने वाला है 8 डिग्रीज दोपहर के आसपास तकरीबन दोपहर 1 से लेकर 5 बजे के आसपास अगर हम देखें तो वेदरमैन का कहना है कि बारिश बरस सकती है महज 20% का चांसेस है लेकिन पहाड़ी एरिया है तो देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशन फॉर द वेदर इटसेल्फ रेडियो चैनल 90.4 एफएम आपकी अमरनाथ जी यात्रा सफल हो संपूर्ण हो टीम रेडियो चैनल एंड वी केयर फॉर यू

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: जूस।
1: कौन आया?
2: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
3: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
4: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
5: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
6: हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम। मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, व्हेन यू कांट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, एडजस्ट योर सेल्स। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार सिलेक्ट

0: bunch of Zeus.
1: Going out.
2: Zeus.
3: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल के धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम आज भी एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो वासा। वक्त हो चला है कि वॉच सब शो में आज का टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन सुमिता हमारे साथ जुड़ी है। लिखते हैं सुमिता सर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। नमस्ते हमारी प्यारी सी बहन को भी, वालेकुम सलाम। और लिखती हैं आगे कि मेरे जो हस्बैंड हैं बैंक में काम करते हैं, तो दिन भर मैं घर संभालती हूँ। हम कश्मीर में रहते हैं लेकिन बाहर से हैं। ओके वेलकम, उम्मीद करता हूँ कि आपका अच्छा समय बीत रहा है कश्मीर में। और आगे सुमिता लिखती है कि हस्बैंड तो ऑफिस जाते हैं लेकिन भैया मैं आपका शो कंटिन्यूसली सुनती हूँ और मज़ा आता है, हर रोज़ सुनती हूँ रेडियो चिनार हर दिल की धड़कन। ओके थैंक यू सो मच हमारी प्यारी सी बहन का, और यूं ही प्यार देते रहें, रेडियो चुनाव सुनते रहें और दिल की धड़कन को धड़काते रहें। एंड गॉड ब्लेस यू, स्टे हक टू द हार्डेस्ट फ्रीक्वेंसी। हमारे साथ जमील जुड़े हैं, लिखते हैं जमील सर पहली बार मैसेज कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दोस्त। और आगे लिखते हैं सर आप क्या खाते हो, मुझे आपकी बॉडी अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच दोस्त, पहले तो बॉडी अच्छी लगती है आपको। वेल खाने का यह है कि रेगुलर एक्सरसाइज, क्लीन डाइट, अच्छा खाना और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कार्बनाइज वाटर जंक फूड वगैरह है उससे दूर रहना। हाँ एक्सरसाइज इज़ द मेन फोकस और इट्स ऑलवेज 70-30% ऑफ द एक्सरसाइज एंड 70% ऑफ द क्लीन डाइट। आई होप यू गॉट इट। व्हाट्सएप शो में हिस्सा बनने के लिए 9999904 इज द नंबर। आप भी हमारे साथ जुड़े कॉल व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। भैया जी डीएम करें और डीएम करके भी आप हमारे साथ जुड़े। डीएम करने के लिए इंस्टाग्राम पर आइए, चूज द बैड बॉय ऑफ रेडियो सर्च कीजिए, डीएम कीजिए आईडी पर और आप शो का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप शो और व्हाट्सएप शो में आज हम बात करने वाले हैं वायरल मूवी डायलॉग्स की। अब ऐसे ऐसे डायलॉग जैसे तेजा तेजा क्या है, ये तेजा तेजा या बेटा साईं या प्यार किया तो डरना क्या, अनारकली हम तुम्हें दीवार में चुनवा देंगे, ऐसे कितने सारे डायलॉग्स हैं जो आइकॉनिक हैं और आज भी हमारी जबान पर ठहरे हुए हैं। अब कोई पूछता है दोस्ती यारी में कि वहाँ पर तो कितने आदमी थे रे, मतलब ऐसे डायलॉग जो लिखे गए एक बार लेकिन बार बार हमारी जबान का जायका बदलते हैं। जी आज हम उन्हीं यादों को टटालेंगे और आज हम बात करेंगे वायरल मूवी डायलॉग्स की। रेडियो चुनाव 90.4 FM, अगर हम इन डायलॉग्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इन डायलॉग्स को जो है कारगर बना दी थी एक्टिंग और अदाकारों की अदाकारी।
4: मैं जिंदा हूँ, गब्बर से कहना तुम इस गांव से एक दाना भी नहीं ले जा सकते।
3: गब्बर रेनी चुनार के हार्ड फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ, जग से सब बने रहे सुनते रहे, मैंने कहा धड़काते रहो।
4: मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है कालिया, नजर उठाकर देख लो।

0: के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: मैनू एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
3: कुछ और मांग लेना मोटरसाइकिल
4: दिला दीजिए ना।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: आज है

0: til Zeus. Kom on, ayo.
1: Zeus.
2: और इस फ्रीक्वेंसी अधिक के दर्कन रेडियो चैनल 90.4 को मैं एंजॉय कर रहा हूँ मस्तार शो व्हाट्सएप जी हाँ मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग्स आज के व्हाट्सएप शो का टॉपिक और ये जो टॉपिक है इसलिए है ताकि आपको मिले इंफरटेनमेंट का डोज लाइक एवरी रोज अब सोशल मीडिया का जमाना है और जमाना ऐसा है कि हर एक दिल सोशल मीडिया का दीवाना है रील्स स्क्रॉल होती है और उन्हीं रील्स में रिवाइव होते हैं पुराने डायलॉग्स भी जी हाँ पहले जमाने में मूवीज देखकर जो डायलॉग्स बनते थे और जबान पर छाए रहते थे आज वो मीम्स की सूरत में हमारे सामने पेश आते हैं और लोग उन्हें आज भी देखते हैं हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं या कुछ डायलॉग्स तो ऐसे इंटेंस होते हैं कि लोग उन्हें सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल भी करते हैं चाहे जेंजी हो मिलेनियल्स हो जेन अल्फा जेन बीटा कोई भी जनरेशन हो भैया डायलॉग्स जो आइकॉनिक रहते हैं सबकी जुबान पर रहते हैं और ये किस्सा सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है बल्कि हॉलीवुड में भी ये चलन जो है जारी रहता है बहुत सारे लोग तो ऐसा करते हैं कि डायलॉग सुन के उन्हें रट्टा मार के याद कर लेते हैं और उसके बाद सिचुएशनल या सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उनका इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ में इस्तेमाल होता है बहुत सारे डायलॉग्स जो आज भी लोगों को याद होते हैं जब आपकी फंक्शन में कोई लेट आता है जैसी छाना ना इतपेट डान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है या बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा आपने भी तो ये डायलॉग कितनी बार इस्तेमाल किया होगा कितनी बार आपने भी इसको बोला होगा और सलमान खान का जब भी जिक्र आता है तो कुछ बोलते ही है ये ना पका दुआ की दिखा एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद के भी नहीं सुनता है ना कितने सारे डायलॉग या स्टार वॉर्स का मे द फोर्स विद बी यू आई एम गोना मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज ही लुक्स लाइक एट यू लाइक अ किड एंड देर आर सो मेनी डायलॉग्स बट

आजकल मीम कल्चर है तो भैया जब भी आप कमरे में घुसते हैं तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई, तो ये चीजें अक्सर सुनने को देती है। बट ये आइकॉनिक डायलॉग्स तभी आइकॉनिक बनते हैं जब उन्हें इस तरह से लिखा जाता है या अदाकार उनको परफॉर्म करते हैं ताकि वो लोगों के दिला दिमाग पर छा जाए। देखिए यही तो होती है क्रिएटिविटी। एक क्रिएटिव बंदा कुछ लिख देता है लेकिन वो यादगार या आइकॉनिक बनता है जब उसे सारे मिलकर पूरी क्रिएटिविटी के साथ लोगों के सामने परोसे। रेडियो 90.4 एफएम, जी हां, वायरल मूवी डायलॉग्स आज हमारे फर्स्ट शो का टॉपिक। आप बने रहें, सुनते रहें, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें। मैं हूं जॉक्सू, धड़काते रहो।

0: ट्रेन मांगो, ट्रेन ट्रेन, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी,
1: सोले का बड़ लकी खराब है।

0: grande.
1: E esse aqui, esse pi, esse é magro, hein?
2: Good.

चुब्बे, रोकी सूखी जो मिले पेट भरने के लिए और काफी दो कच्चा जमी जीने मरने के लिए। अबे कितना मांग रहा है मुंगीलाल, अपनी साइज के हिसाब से मांग रहा है।

0: दोस्तों हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम। जी हाँ, वायरल मूवी डायलॉग्स आज के व्हाट्सएप शो का टॉपिक, और व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश रहेगी टेक टॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज़।
1: कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
0: जी हाँ, रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर जरा सा इंतजार देते रहे प्यार। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। मेरे यार, टेक टॉक्स बॉलीवुड न्यूज़ कुछ ही देर में आपके लिए। सुनते रहिए हर दिल की धड़कन। मैं हूं जॉक्स, सिर्फ धड़काते रहो।

0: ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ।
1: बेटा ये गुटका खाने का इतना शौक है तो एक काम कर, एक दोस्त और बना, कांधा देने के काम आ गया।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM। हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

So friends, it's my time to sign off for the day. Aapse junne wali hai RJ Diva lekar show Chinar Beats kuch hi der mein. Beats on repeat. कल फिर से मुलाकात होगी. आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड स्टे हुक्ड टू द रेडियो चैनल, क्योंकि रेडियो चैनल सही है मेरे यार. टिल वी मीट

It's Vedharchi Diva on Radio Channel 90.4 FM.

0: R&B. Beats on repeat, show Chunar Beats. I'm enjoying it only on Radio Chunar 90.4 FM. Day sari baatein, masti mazak, fun, entertainment aur entertainment ke alawa day sari information aap tak pahunchti hai. Well, I'm super excited. Hamesha ki tarah ki aakhir kya kuch hai bas? Kyunki har ek cheez trending jo hoti hai, jo social media par jisne dhamal kar diya, ya koi aisi cheez jo sach mein aap jaate dil se aap experience karte ho, subah subah nikalte office ke liye, ghar se nikalte, to aap bahut sari aisi cheeze notice karte ho aur aapko lagta hai ki sach mein hame aisa platform chahiye jahan pe hum logon tak ki awaaz pahunchaye ki sahi kya hai, galat kya hai aur kin cheezon ke liye aapke jo opinions hai वो सबसे पहले आते हैं, वो हम ज़ाया नहीं होने देते हैं, यानी कि हम आपकी बात पहुंचाते हैं वहां वहां तक जहां जहां तक पहुंचती है रेडियो चुनार की आवाज़. तो जल्दी कीजिए, शो का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि अकेले मज़ा नहीं आता. और मज़ा कैसे आता है आपके साथ से, तो मेरा साथ दीजिए शो पे. बताइए मुझे कि आखिर क्या है आपके हालात, जज्बात और ख्यालात. अब देखिए, बाहर जाते ही अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, कभी धूप कभी छाँव, बट गर्मी है, ह्यूमिडिटी है और हर किसी के दिल और दिमाग से यही ख्याल आता है. नहीं, प्यार तो है वो भी बेशुमार, अब क्यों ना हो. और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर है और बैक टू बैक सॉन्ग सदा टू विदाउट एनी एरियन कैट फ्री म्यूजिक का वादा देता है रेडियो चुनार भरपूर. और सबसे ज्यादा आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन तमाम हक से बजा.
1: अरे यार, कोई एसी चला दो यार.
2: सही है, सही
1: मजा ही मजा है ब्रो.

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हो ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ये सारी बातें हो रही है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे जम्मू एंड कश्मीर। नेशनल हाईवे की बात करें बहुत साइड से ट्रैफिक अलो किया जा रहा है एंड आपको बता दें कि लाइट मोटर व्हीकल्स जो है एज पर गाइडलाइंस की उन्हें सुबह से लेकर शाम के 7:30 तक ही अलो किया जाएगा। एंड जो हम बात कर रहे हैं हैवी मोटर व्हीकल्स की, स्पेशली आप समझ लीजिए कि ये गाइडलाइंस जो टू श्री अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, 3 जुलाई से कंटिन्यू है यात्रा, तो भी लाइट मोटर व्हीकल्स और हैवी मोटर व्हीकल्स का थोड़ा टाइमिंग डिफरेंट है। एंड इफ आई सी दो ये टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो लाइट मोटर व्हीकल्स का सुबह से लेकर शाम के 11:30 तक और जो हैवी मोटर व्हीकल्स है उन्हें सुबह से लेकर शाम के 7:30 तक ही अलो किया जाएगा। जी हाँ, जो हैवी मोटर व्हीकल्स है उन्हें सुबह से लेकर शाम के 7:30 तक अलो किया जाएगा, जो लाइट मोटर व्हीकल्स है उन्हें 11:30 तक अलो किया जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, अगर हमने अपना प्लान बनाना है, हमने जम्मू टू श्रीनगर, श्रीनगर टू जम्मू आना है जाना है, तो उसके हिसाब से यानी कि जो हमें ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गाइडलाइन दी गई है उसके मुताबिक ही हम प्लान बनाएं। और उसके अलावा सीट बेल्ट, ये हम सबकी जिम्मेदारी। देखिए ये मैं आपको बोलूँगी, कितना भी बोलूँगी, जब तक आप नहीं समझोगी कि इसकी अहमियत क्या है, यानी कि सीट बेल्ट हमारी गाड़ी में होना फिर हम उसको नहीं लगाना, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि हम समझते हैं हमारी जान शायद उतनी कीमती नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जान भी कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है कि सीट बेल्ट हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है।

ईयरबड लगाने से हमारी जान बच सकती है और बहुत सारे लोग भी उस चीज़ से इंस्पायर होकर उस चीज़ का पालन करते हैं। तो वी हैव टू एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी हमारे कंधों पे, हमें उसे निभाना है, गाड़ी को चलाना है, उड़ाना नहीं। और अगर सच में आप जिंदगी में हीरो बनना चाहते तो हीरा वाले काम भी तो करते हैं ना भैया।

अब आप मुझे बोलिए कि आप हीरो है या फिर आप कूल बनने के चक्कर में कभी कभार फूल बन जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ट्रैफिक पुलिस की तिरछी नज़रों से हम बच सकते हैं, पर तुम छुआ रह चालाक आसान हो चालान घर पहुंचता है। सो चालान कटने से हम तो बच सकते हैं जब हम हर एक चीज़ का पालन करेंगे, ड्राइविंग एसओपीज़ को फॉलो करेंगे, गलत जगह पे ओवरटेक नहीं करेंगे और अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। तो ये गाड़ी है, हिलाने का मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी को कहीं पे भी चलाएंगे। अब ये चीज़ है कि आप अगर कहीं पे रुक के चाय की चुस्की ले और उसके बाद वापस आए तो आप बैक टू बैक सॉन्ग सुनेंगे द टू विदाउट एनी एनी एनी एट फ्री म्यूजिक का वादा देता है रेडियो चुनाव पर पूरा। सबसे ज़्यादा आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM।

Jeremy. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Jeremy. Jar Beats with Harshadeva on your radio channel 90.4 FM.

0: जीवा।
1: जी हाँ, खबर ऑनलाइन लेकर मैं हूँ आज़र। तो वही बहुत ज्यादा खबर विस्तार सुन, क्या है आज की खबर? तो हम बात कर रहे हैं जी, आए हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माय मैन। यस, हम टॉकिंग अबाउट जैस्मिन सैंडल्स और जो उन्होंने अनाउंस किया है द ड्रीम गर्ल इंटर टूर इन न्यू दिल्ली में, जो उनका कॉन्सर्ट चल रहा था और उन्होंने अपने जी हाँ बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया, और वो भी एक अलग ही दासो स्टाइल में, शेखर चौधरी उनके बॉयफ्रेंड ने, और इट वाज सो ड्रीमी, सो ब्यूटीफुल। यानी कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि ऐसा प्रपोजल तो हर कोई डिजर्व करता है। क्या आपने वो देखा? क्या आपने सोशल मीडिया ये वाली न्यूज ट्रेंडिंग पे थी? क्या आपको पसंद आया ऐसा प्रपोजल? मुझे बताइए। शो का ऐसा बन जाए 8999904904 पर आप कॉल टेक्स्ट व्हाट्सअप करके शो का ऐसा बन सकते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुना 90.4 FM।

रोज हर रोज आपके लिए है हाजिर, और क्या है डेली डोज, यानी कि क्या चीज़ें हैं, क्या दिल की बात है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सच में बोलना चाहते हैं बट कोई रुकावट आती है और हमें लगता है कि नहीं बोल पाते। यार क्या चीज़ें हैं जो हमें रोक रही है, तो मैं बता रही हूँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। मैं हूँ आपके साथ, मुझे बताइए, मैं दबे करार हूँ सुनने के लिए। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि कभी कभार क्या होता है ना कि हमारे अंदर बहुत सारा प्यार होता है, यानी कि हम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न, यानी कि हम बहुत शाई होते हैं या फिर हम चाहते हैं कि अगर हम इन इंसानों को या फिर जो भी हम हमारी फैमिली होती है, हमारा लाउड वन होता है, पार्टनर होता है, अगर मैं इनको बोलूँ कि आप बहुत मैटर करते हो मेरे लिए, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, ये कैसे बिहेव करेंगे। सो वो चीज़ें हमेशा हमें वो कहती है कि नहीं पता नहीं करूँ, ट्राई नहीं करूँ, सो वो चीज़ के बीच में फंस जाते हैं। पर मैं कहती हूँ कि कभी लवों से तो बात निकालनी ही चाहिए, ताकि लवों पे आई बात और वो दिल को ही छू जाते, वो एक सही इंटेंशन से करे तो मज़ा ही आ जाता है। आई एम श्योर आपने भी कभी लाइफ में ऐसा किया होगा, अगर किया है मुझे बताइए क्या था रिएक्शन और क्या मिला आपको उसका जवाब। 8999049044 WhatsApp कीजिए और शो चुनाव बीच का हिस्सा बन जाएगा।

Chinar Beats with Archie Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

कि मैंने तो वेट किया बट कॉल तो नहीं आई. बट मैं बताती हूँ, इट्स 8899-0494. आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो का ऐसा बन सकते हैं. फिर से बता रही हूँ, इट्स 8899-0494. आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो का ऐसा बन सकते हैं और शो में अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं. एंड अगेन आई एम सेइंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बुक फेस्ट. जल्दी कीजिए, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 91.4 FM का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

Chinar Beats with Archie Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Please don't repeat. Show Chunar beats up. Enjoy kar rahe only on Radio Chunar 90.4 FM. And we are talking about Book Fest, जो हर साल होते हैं हमारे पूरे देश की अगर बात करें हर साल में किसी न किसी मंथ में हम देख रहे हैं कि चुनार बुक फेस्ट हो रहा है जम्मू कश्मीर की. एंड स्पेशली बात करें कि आई हैव ऑल्सो अटेंडेड लास्ट ईयर चुनार बुक फेस्ट इन जम्मू कश्मीर SKICC में एंड इट वॉज सो गुड. यानी कि इतने सारी किताबें थी वहाँ पे, बहुत सारी किस्म की किताबें थी और आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि एक ही जगह पे इतनी सारी बुक्स कैसे मिल सकती है. वही तो कमाल है चुनार बुक फेस्ट का कि हर साल ही वहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं. यानी कि आप जो भी किताब ढूंढेंगे वो आपको वहाँ पर मिलेगी. और आई वॉज सो सो सो अमेज्ड बिकॉज हमने देखा कि बच्चे वहाँ पर आ रहे थे एंड दे वॉज सो हैप्पी कि हम ये किताबें कब से ढूंढ रहे थे. एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि जब वो फेस्ट होता है बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलकर उसे अटेंड करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और खुश होते हैं एंड वो कितना ज़्यादा किताबों से प्यार करते हैं, चाहे फिर उनका जो पूरा पोइट्री हो, स्टोरी टेलिंग हो, यानी कि किसी भी किस्म की किताब उन्हें वहाँ पर मिलती है. और आई बिलीव कि वहाँ चुनार बुक फेस्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी. यानी कि सिर्फ किताबें नहीं, बुक म्यूज़िक हो, परफॉर्मेंसेस हो, आर्ट एग्जिबिशन, यानी कि ओवरऑल हमारा जो लोकल कल्चर है या फिर उसमें वो भी दिखाया जाता, हमारी जो लोकल भाषा है उसमें उसकी किताबें भी वहाँ पर मिलती है. सो चुनार बुक फेस्ट जो है एक बेस्ट बेस्ट बेस्ट इनिशिएटिव है बहुत सारे लोगों के लिए जो किताबें पढ़ते हैं. एंड स्पेशली हमारी जो इम्पोर्टेंस है, हम कहीं ना कहीं AI की वजह से या फिर सोशल मीडिया फिर या फिर इंटरनेट की वजह से वो कहीं ना कहीं कम हो गई. यानी कि पीपल आर मोर लाइक एक ऐसा हम कह सकते हैं सेक्शन ऑफ पीपल है दैट लाइक कि हम इंटरनेट से ईजीली हमें मिलते हैं. यस मिलते हैं, बट अगर हम ओवरऑल देखें बुक्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. और आई बिलीव कि जो बुक से पढ़ने में मज़ा है वो इंटरनेट पे कहाँ है, क्योंकि वो इंस्टेंट आपको मिलता है, आप समझ नहीं पाते. और जो बुक से हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सारा दिमाग पे इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस बारे में और पढ़ने का एक अलग ही मज़ा आता है. सो ज़रूर इस साल भी अभी चुनार बुक फेस्टिवल हो रहा है जम्मू कश्मीर में और कब होगा डेट्स भी हम आप तक पहुँचाएंगे. ज़रूर आप इन फेस्ट में पार्ट लिया करें ताकि आपको अपनी पसंदीदा किताबें भी मिले और आपको इन फेस्ट में पार्ट लेने का मौका भी मिलेगा. आप मुझे बताइए कि आपने कोई बुक फेस्ट अटेंड किया है, कैसा लगा, क्या था एक्सपीरियंस. 8899-04904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनार बीट्स का हिस्सा बन जाइए.

0: Beats on repeat.
1: Beats on repeat. Show chunar beats up. Enjoy karein on your radio chunar 90.4 FM. And yahan pe aaj show chunar beats ko tata bye bye karna padega. Kyunki shamil se kaun dimar ab enjoy kar payenge. Barabar date se lekar 2 baje tak. और शो की बात करें तो आज बात हो रही थी बुक फेस्ट के बारे में और जल्दी ही अनाउंस हो रहा है डेट चुनार बुक फेस्ट यानी कि जो लास्ट ईयर भी हुआ था इस साल भी होने वाला है कश्मीर में SKICC में। ये भारत के हर एक जगह पे होता है, एक हम देखिए तो यूटी और स्टेट में होता है बट अभी के लिए हमारे स्टेट हमारी यूटी में हो रहा है। तो कब हो रहा है, जल्दी डेट्स अनाउंस होंगे, सबसे पहले हम आप तक पहुँचाएंगे। आप

मौका मिलेगा जाने का चुनदार बुक फेस्ट में। फिलहाल के लिए बुक फेस्ट के बारे में तो बात हो रही थी, बुक से तो बहुत प्यार है, बट प्यार इससे भी है कि टाइम, यार ये टाइम है ना, ये हमेशा मुझसे कभी दूर जाता है। नहीं, मैं ज़्यादा बातें करना चाहती हूँ, बट ठीक है, चलो अब आपकी बारी, यानी कि आप अपने फेवरेट ट्रैक सुनेंगे, आप अपने पसंदीदा ट्रैक सुनेंगे। नंबर वही है जो कि आपको हमें जोड़ के रखता है, इट्स 8899904904। ये नंबर है, आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके मुझे अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि मैं चलाऊँगी आपका फेवरेट ट्रैक। एग्जैक्टली, आप चैट भी कर सकते हैं, ट्रैक चलाऊँगी मैं आपका फेवरेट। 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाए। जल्दी कीजिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है।

जी हाँ, जो म्यूजिक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आप अपनी पसंदीदा ट्रैक सुने, यानी आप अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं। 8899-0494 पर आपने कॉल करनी है, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके आप शो में शामिल हो सकते हैं और अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली रिक्वेस्ट आई है ईशा की, आप भी इंजॉय कीजिए ईशा की रिक्वेस्ट पे ये ट्रैक। और आप अपना फेवरेट ट्रैक सुनने के लिए 8899-0494 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड कैसा बन जाए।

बशीर की रिक्वेस्ट आई है इस ट्रैक के लिए, आप भी इंजॉय कीजिए ये ट्रैक फ्रॉम द मूवी वीर ज़ारा। आप भी अपना फेवरेट ट्रैक सुनने के लिए 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शुभ म्यूज़िक अनुमान का हिस्सा बन जाए।

Best IS try के लिए सुपोर से आप enjoy कीजिए on your radio star 90.4 FM. आप सुन रहे हैं music on demand. आप 88999 0494 पर call text WhatsApp करके show music on demand कैसा बन सकते हैं.

देखिए दूर जाने का मेरा कोई इरादा होता नहीं, मेरे ये कम वक्त टाइम जो है ना, ये कहता कि आप चले जाइए क्योंकि असरा आएगी विद फुल ऑन ड्रामा हंगामा। क्या क्या होगा वो तो वही आपको बता सकती है। फिलहाल के लिए मैं तो जा रही हूँ, बस दूर नहीं परदेसी तो नहीं हूँ आपकी, बस आपकी अपनी हूँ। थोड़ा वाइब और ट्राइब, थोड़ा मसाला और क्या कुछ होता है शो चुनार बीट्स पर। अब देखिए मुझे मज़ा आया बहुत ही ज़्यादा, शो चुनार बीट्स म्यूज़िक ऑन डिमांड। टाटा बाय बाय हो रहा है, बट मैं कल आऊँगी 12 बजे आपसे बात करने के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और सुनते रहे रेडियो चुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमर

नाथ जी यात्रा का प्लान बनाए। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा अब।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

बिजली का तो पता नहीं बिजली आई कि नहीं आई, पर मैं आज जस्ट आ चुकी हूँ लेके शो हंगामा, जहाँ होता है ड्रामा, एंटरटेनमेंट, क्या बजिंग है और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। देखिए आते आते ही प्ले होता है कुछ खास, कुछ क्रेजी, जहां आप फिर उठे।

शो शुरू हो चुका है, बहुत सी बातें होंगी, ऑब्वियसली बहुत सी बातें हैं, एंटरटेनमेंट है, इन्फॉर्मेशन है, एंड देयर इज सो मच मोर टू कम. और बराबर 4 तक चलेगा ये शो. मैं हूं आसरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम। शो है हंगामा और जैसा कि हम शो शुरू करने के बाद बात करते हैं सबसे पहले कि क्या चल रहा है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं स्टोरीज, लिप सिंकिंग, डांस रील्स, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या हो एक्स। और आज जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज द वन एंड ओनली द ब्यूटिफुल द फनी द गॉर्जियस दैट इज श्रद्धा कपूर। उनकी नई मूवी आने वाली है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट, बट कुछ ही हफ्ते पहले उनका टाइटल ट्रैक ऑफ द मूवी रिलीज हुआ है और नाम है ईठा बाई और दिस इज ओवर अ डांसर, महाराष्ट्रीय डांसर जो बहुत खूबसूरत उनकी कहानी है और खूबसूरत से ज़्यादा एक रेजिलियंस की कहानी है उनकी। एंड अभी तो टीज़र आउट हुआ है एंड एवरीबडी इज़ गोइंग क्रेजी ओवर दिस मूवी और अभी रिलीज़ नहीं हुई है तो क्या होगा जब ये रिलीज़ होगी। ओह माय गॉड।

0: डीजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। शो है हंगामा। देखिए, ड्रामा, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, क्या क्या नहीं होता है यहाँ, बट अपडेट्स भी जरूरी है। एंड राइट नाउ इट्स द टाइम फॉर रेलवे अपडेट। और अभी की अपडेट यही है कि हर कोई ट्रेन शेड्यूल्ड है एज पर द समर टाइम टेबल। और आपको समर टाइम टेबल मिल सकता है फ्रॉम द ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट रेलवे ऐप, दैट इज रेल वन। और जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था पटन स्टेशन और हामरे स्टेशन के बिटवीन, उस वजह से कुछ ट्रेन्स डिले हो सकती हैं इन द मॉर्निंग, चाहे वो 9 बजे की हो, 10 बजे की हो। एंड स्पेशली जो बारामूला बड़गाम बानीहाल रेलवे लिंक है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। एंड स्पेशली आपको अपना जो रूटीन है, आपका जो शेड्यूल है, उसी हिसाब से यू हैव टू डिपार्चर, अराइवल, हर कोई चीज़ वैसे ही, क्योंकि कहते हैं ना, सामान और सवारी एकदम जिम्मेदारी के साथ आपको लाना पड़ता है। और यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। और इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर 10-15 मिनट पहले पहुंचे, ताकि आपको कोई भी डिले फेस करना ना पड़े।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: जी वेलकम बैक जी, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम पे शो चल रहा है हंगामा हंगामा ड्रामा। और अभी वक्त है 1 मिनट अपडेट का, 1 मिनट फैक्ट्स, यानी कि 1 मिनट में एक फैक्ट। और आज का फैक्ट इज रिलेटेड टू दिस ट्रैक। गाने का नाम है किलिमंजारो और ये गाया है जावेद अली और चिन्मया श्रीपड़ा ने। और जावेद अली इज़ अ नॉन तमिलियन एंड द फैक्ट इज़ कि उन्होंने ये लैंग्वेज सिर्फ इस गाने के लिए सीखी और तमिल, तेलुगु और फिर हिंदी में भी इस गाने को गाया। एंड इट इज़ वन ऑफ द फेमस ट्रैक्स ऑफ रजनीकांत। And he was inspired and asked to do this by the one and only A.R. Rahman. And obviously, A.R. Rahman ऐसे composer हैं, ऐसे like music composer हैं जो actually लोगों को push करते हैं to know their talents. And वही हुआ है जावेद अली के साथ भी। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: बजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: मैं वस्त्रा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM एंड दिस इज द टाइम फॉर टॉपिक रिवील। और आज का टॉपिक रिलेटेड है म्यूजिक के। म्यूजिक के कैसे, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसपे बहुत सारी चीजें हमें एडिशनल मिलती हैं। जी हाँ, वी लिसन टू म्यूजिक, वी फील रिलैक्स्ड, वी फील सम ऑफ द इमोशंस, बट देर आर डिफरेंट जॉनराज जिससे हमें डिफरेंट चीजें महसूस होती हैं। बिल्कुल, क्या है जॉनराज एंड एक्चुअली म्यूजिक जॉनराज क्यों अलग होते हैं और किसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी है इन द इंडियन कल्चर। मैं हूँ असरा, सुन रही है रेडियो सुना 90.4 FM। कुछ ही ड्राइव के बाद वापस आएंगे, करेंगे बात इन जॉनर्स के बारे में। तब तक के लिए सुनते रहिए द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026, जय बाबा बर्फ।

हाय, मैं वस्त्र और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम म्यूजिक जॉनर्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि सबसे पहला जॉनरा जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ समथिंग जो हम यूजुअली सुनते हैं एंड दैट इज़ वेरी कमर्शलाइज्ड। बेसिकली दैट इज़ कैची जो कमर्शियल मेलोडीज़ होती हैं, एक्चुअली जो हम मूवीज़ में यूजुअली, बॉलीवुड की बात करें या इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बात करें, बैंड्स की बात करें, तो मैक्सिमम जो आर्टिस्ट हैं अभी के टाइम पे दे आर पॉप कल्चर में इन्वॉल्व हैं। चाहे हम पंजाबी पॉप कल्चर देखें, चाहे हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट पॉप कल्चर देखें, चाहे हम बॉलीवुड में पॉप कल्चर देखें, देयर इज़ म्यूजिक एवरीवेयर एंड पीपल

डेफिनेटली पॉप रॉक्स द वर्ल्ड राइट नाउ. और इसके अलावा स्पेशली अगर बात करें पंजाबी पॉप कल्चर इज समथिंग दैट इज ब्लूमिंग ऑल अराउंड.

देखिए प्यार तो हमें आपसे है पर आपके विचार भी जरूरी है। मैं मस्ता सुनते रहिए रेडियो सुनार एंड प्लेइंग पॉप म्यूजिक फॉर यू बैक टू बैक, क्योंकि बैक टू बैक ट्रैक्स का वादा रेडियो सुनार देता है सबसे ज़्यादा। और इसके बाद भी हम बात करेंगे बाकी जो जॉनराज हैं उनके जो ट्रैक्स हैं वो भी आपको सुनाएंगे। मैं मस्ता सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं मस्टा और हंगामा शो पे आज कुछ मस्त चल रहा है. दैट इज म्यूजिक जॉनर्स. और जैसे कि हमने अभी तक पॉप कल्चर की बात की, पॉप म्यूजिक की बात की, बट अभी देर इज अ रियल एंड अ लिटल टू द अग्रेसिव साइड. बिकॉज एक ऐसा जॉनरा जिसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी बयां होते हैं, लोगों के साथ अगर बीफ है, आर्टिस्ट के साथ बीफ है. दिस जॉनरा इज ऑल अबाउट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द रैप एंड हिप हॉप इंडस्ट्री.
1: जुआरा दिल में कह दे रहा वक्त दे रहा कामयाबी स्पीड डायल पे. हाँ फ्री स्टाइल करूँ तो मैं जी स्टाइल जो भी करूँ जी चाहे हूँ मैं गरम टी टाइम मेरे पे ना फ्री टाइम के मैं खेलूँ फ्री फायर मैं पहलू.
0: This is a rap and the artist right now is MAY Bantai. इसके अलावा अगर बात करें बहुत सारे और भी rap artist हैं, चाहे बादशाह की बात करें, Divine, Raftaar, Honey Singh, Hanuman Kind, Raja Kumari. That is a one very influential Indian American artist जो like she has even nominated for the Grammy. इसके अलावा King है, Krishna, Seedhe Mauth, Prabdeep and there are so many artists. And especially अगर पंजाबी का चर की बात करें तो देर इज अ बोहेमिया दैट इज वेरी फेमस फॉर द रैप्स एंड द पेन वर्क ही डज.
1: बोल लाला क्या तेरी ख्वाहिश हम मचा रहे जब से ते भाई सड़ी आई बचा के नजर रख भाई अपनी मचा के मजा के लाला बेटा बन रहा तेरा मजा के पटेली वटेली.
0: Right now, if we'll talk about the youngsters, MAY Bantai, Krishna, Seedhe Mauth, they are really famous. And iske alawa agar baat kare ek aur genre ki, that is jazz. Jazz bilkul hi opposite hota hai rap ka. Jazz is more like a very smoky, mysterious energy, jahan slow music hai, but with a mysterious touch. And that takes a lot because ye jo music hai, usually parties mein play hota hai, jo elite parties hai, wahan play hota hai and this has a own fan base. This is an example of jazz music. Muskane Jhooti hai from the movie Talash and jo actually you can listen to that vibe, that smoky, ek mysterious energy hai, ek flow hai is gaane mein. That is the genre that's called as jazz.
2: Muskane Jhooti hai.
0: मुस्कान झूठी है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैं सच कह रही हूँ कि कुछ ही ट्रैक्स के बाद में वापस आऊंगी और करने आपके साथ बहुत सारी बातें क्योंकि अभी भी बहुत सारे जॉनर्स बाकी हैं. मैं वास्तव सुन रही रेडियो सुनार और एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: And the second genre that we are going to talk about, that is EDM, electronic dance music, jo clubs mein usually play hota hai. That's actually generated by electronic mediums. And usme ek machinic vibe zarur hoti hai.
1: हमको कहते सुपरमैन, ऑन कर लो हैंडीकैम, फ्रॉम एएम टू पीएम.
0: This song is Desi Boys and this is the perfect example of EDM in Bollywood version. Dane ki indie EDM. And kaise isme jo aapko actually background music sunai de raha hai, that is the club electronic music device. म्यूजिक मिक्सिंग की जाती है, कंसोल्स का इस्तेमाल होता है, डीजेस का इस्तेमाल होता है, एंड दे मेक द परफेक्ट वाइब ताकि लोग थिरक उठे. These are two different genres and two different group of people like these genres. मैं हूँ अस्त्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार. और अभी तक जितने भी genres के बारे में हमने बात की है, आप बताइए कि आपको कौन सा पसंद है. But जो beautiful, soft and बहुत ही cozy से genres हैं, उसके बारे में कुछ ही tracks के बाद बात करेंगे. फिलहाल के लिए enjoy कीजिए back to back tracks. मैं हूँ अस्त्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

0: welcome back to Show Hangama, only on Radio Sonar 90.4 FM. Hangama, drama and information, updates. और देखिए updates भी हो गए, topic का एक आखिरी पड़ाव पहुंच चुका है क्योंकि इसके बाद हम game on segment शुरू करेंगे, that is related to sports. But अभी की बात करें तो we have to talk about the last remaining genres, music genres that we have to talk about because they are so beautiful, so soul filling, wholesome energies आती हैं इन सब genres से. और सबसे पहले मैं बात करूंगी एक ऐसे genre की जो actually बहुत ही ज़्यादा prevalent है, और जब आप दुखी होते हैं तो आपको ऐसे ही गाने सुनने को पसंद है, जिसे हम R&B एंड सोल सॉन्ग कहते हैं. एक्चुअली द सोल सॉन्ग्स आर वेरी सॉफ्ट, एक्सप्रेसिव होते हैं, इनमें आपकी फीलिंग, यूं तो हर म्यूज़िक में फीलिंग्स इमोशंस ही एक्सप्रेस होते हैं, बट जो ये सोल सॉन्ग्स होते हैं, R&B सॉन्ग्स होते हैं, ये जो जॉनरा है इसमें स्लो एक कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक होता है, एक सॉफ्ट म्यूज़िक है दैट यूजुअली पीपल एंजॉय ऑन द डेज दे आर sad or happy or in love.
1: ye duri kehti hai paas mere aa ja re.
0: One of my favorite soul songs, Zara Zara from the movie Rehna Hai Tere Dil Mein. Hi, main Delhi bol raha hoon Mary se. I love this movie. And agar aapko bhi pasand hai, toh humse share kar sakte hain. 8899049904 is the number you can call, message, text, WhatsApp. But, abhi genres pure nahi hue hain. Ek aur genre jo actually bahut hi mushkil hai to learn. And this is one of the best thing jo hume apne culture se mila hai. That is the classical and semi-classical Indian music. क्लासिकल और सेमी क्लासिकल म्यूज़िक में बंदिशें होती हैं और आलाप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट म्यूज़िक आर्ट टू लर्न, टफेस्ट जॉनरा टू लर्न. सो देर आर सो मेनी आर्टिस्ट जो हमारे भारत देश में, हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे आर्टिस्ट हैं, क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, जो इतनी खूबसूरती से ये सारी बंदिशें गाते हैं, परफॉर्म करते हैं ऑन स्टेज एंड लाइव. एंड इसके अलावा भी एक और, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक और जॉनरा है जो यूजुअली एक फ्री स्पिरिट को बयां करता है, एक ऐसी स्पिरिट जो घूमना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, और एक ऐसी स्पिरिट जो कंट्री साइड, जो एक्चुअली दैट सिटी से दूर एक लाइफ दिखाती है. और उसके अलावा भी एक फोक कल्चर भी इसी जॉनरा में आता है, यानी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर राजस्थानी सॉन्ग सुनते हैं जैसे कि चौधरी फ्रॉम द कोक स्टूडियो भारत, वो भी फोक एंड कंट्री सॉन्ग्स में आता है, फोक इन कंट्री जॉनरा में आता है. इसके अलावा अगर बात करें हम कबीरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, दैट इज़ ऑल्सो अ कंट्री सॉन्ग, जहाँ पे आपको एक नई एनर्जी देखने को मिलती है, एक ऐसी एनर्जी जो आपको कहीं और ना मिले, एक ऐसी रियलिस्टिक फिलोसफिकल एक थॉट जो आपको सिटी लाइफ से दूर करने की एक आइडिया देता है. इसके अलावा अगर हम बात करें कश्मीरी फोक कल्चर की, वो भी कंट्री एंड फोक जॉनरा में आता है.

देखिए मैं तो आ गई हूँ बराबर 2 बजे और 2 से 4 हमारा साथ रहता है. फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार. और देखिए अभी तक हमने हर किसी जॉनरा के बारे में बात की कि कौन कौन से जॉनराज हैं, क्या है, किस जॉनरा का क्या वैल्यू है, क्या इमोशन है. वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग. तो अब इट्स द टर्न ऑफ योर्स कि आप बताएं कि आपको कौन सा जॉनरा पसंद है. पॉप कल्चर, हिप हॉप, रॉक मेटल, ईडीएम, जैज, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, सोल या कंट्री. मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम. ये है हर दिल की धड़कन.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार. एंड अभी शुरू हो चुका है सेगमेंट गेम ऑन. गेम ऑन जहाँ मिलता है आपको लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट, और उसके अलावा ये भी कुछ ऐसे फैक्ट्स जो एक्चुअली आपको मालूम नहीं होते हैं, और अननोन फैक्ट्स अबाउट स्पोर्ट्स. और आज का एक बहुत ही मैं तो बहुत अचंभित थी जब मैंने ये फैक्ट देखा कि भाई 2000 यानी कि 2000 से पहले चेस को एक ऑफिशियल स्पोर्ट नहीं माना जाता था. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है IOC 1999 में कंसिडर किया गया कि चेस को हम एक एक्चुअल स्पोर्ट्स बना सकते हैं एज अ माइंड स्पोर्ट, बिकॉज इसमें बहुत सारी टेक्निक लगती है, पेशेंस रिक्वायर है, और सबसे बड़ी बात आपका दिमाग शातिर होना चाहिए. तो ऑफिशियली जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उन्होंने ये डिसाइड किया 1999 में कि हम एक जो चेस है उसे स्पोर्ट्स बनाएंगे, और 2000 तक ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट भी हुई. एंड दैट इज़ समथिंग नोबडी नोज राइट नाउ. एंड ऑनेस्टली दे बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर ऐसे स्पोर्ट्स को जहाँ पे अभी मेडल्स ला रहे हैं लोग, स्पेशली अगर हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जो एक्चुअली मेडल्स एक्वायर कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग सो गुड इन अ स्पोर्ट लाइक चेस. मैं मास्टर सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन. और देखिए अभी भी कुछ टाइम बाकी है, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो. एंड दिस इज़ अ रिमाइंडर दैट 8899904904 इज नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप और बन सकते हैं सॉर्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी का हिस्सा. मैं मास्टर सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM. मैं बस यूँ कही और यू वापस आए.

हाय मैं हूँ आस्था और आप सुन रहे थे रेडियो सुनार 90.4 एफएम पे शो हंगामा। देखिए हंगामा तो खत्म होने जा रहा है लेकिन रेडियो सुनार द हॉट फ्रीक्वेंसी बैक टू बैक ट्रैक्स चालू है।

मैं लेके शो हंगामा बराबर 2000 अभी के लिए बस इतना ही. एंड स्पेशली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए. एंटरटेनमेंट जरूरी है, एडवेंचर जरूरी है, अपने आप को घर से बाहर निकल के नेचर की तरफ लेना जरूरी है. देखिए दैट इज द रियल प्रोग्रेशन. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM. इट्स ऑल फॉर मी एंड दिस वाज ऑल अबाउट मी, दिस वाज ऑल अबाउट शो हंगामा. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम। टीचर्स आर नॉट जस्ट रोल मॉडल्स, दे आर द गाइडिंग फोर्स टू शेप द करियर एंड कैरेक्टर ऑफ ए स्टूडेंट। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान तशरीफ आवर हो चुके हैं। मैं हूँ साहिल मुजफ्फर फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ रेडियो चिनार 90.4 एफएम। एक ऐसी टीचर जिनको स्टेट का बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है, जिनको नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड मिला है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको बहुत बार नवाजा गया है। टुडे वी हैव विद अस द वन एंड ओनली हुमैरा सईद। हुमैरा जी, आपका हम वेलकम करते हैं ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑफ रेडियो चिनार 90.4 एफएम। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, हाउ आर यू फीलिंग बीइंग सेकंड टाइम इन आवर स्टूडियो।
1: पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी साहिल, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी देयर, कि पहले सब ऑडियंस को जो मुझे इस टाइम देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रियली इट वाज द प्लेजर मोमेंट फॉर मी दिस टाइम टू बी हियर इन योर स्टूडियो एंड इट वाज माय सेकंड टाइम टू बी हियर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो आप प्रोग्राम्स करते हैं उन प्रोग्राम्स की नवियत को देख के अगर हम बताएंगे कि हर एक इंफॉर्मेटिव ही होता है। अगर बहिस्सत उस्ताद आपने मुझे दावत दी है स्टूडियो में, मैं आपके प्रोग्राम्स अक्सर देखती रहती हूँ, जो भी आपका प्रोग्राम होता है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि आज का प्रोग्राम जो है ये भी बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा।
0: जी बिल्कुल, आज वी आर थिंकिंग कि हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि यू आर ए टीचर और आपने अपने टीचिंग करियर में बहुत सारे चैलेंजेस देखे, अप एंड डाउन देखे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। एज ए टीचर आपकी एक्सपीरियंसेस डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट रही होंगी और जब हम आज की डेट में अपनी सोसाइटी पे नज़र डालते हैं तो सोशल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, जो रिलीजियस वैल्यूज है हमारे कल्चर के, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि उनको एक बार फिर से वो रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। एज ए टीचर, एज ए मदर, आप क्या सोचती हैं, समझती हैं इस बारे में, कितनी ज़रूरत है?
1: साहिल साहब, ठीक है कि जो आपने बात फरमाई, तो ऐसा है कि आप लोगों को भी पता होगा कि जब हम लोग स्कूल जाते थे तो मॉरल एजुकेशन बहुत दिया जाता था स्कूल में।
0: बिल्कुल,
1: नाउअडेज वी डोंट हैव टाइम, उसके लिए वक्त ही नहीं है कि मॉरल एजुकेशन बच्चों को दिया जाए। क्यों नहीं है कि सुबह हम मॉर्निंग असेंबली में चले जाते हैं, मॉर्निंग असेंबली बच्चे ने अटेंड किया तो डायरेक्ट वो चला गया
0: क्लास।
1: हाँ बिल्कुल, वो क्लास में चला गया। क्लास में जो ही वो गया तो उसकी चाहे फिजिक्स की क्लास हो, बायोलॉजी की क्लास हो, इंग्लिश की क्लास हो, तो वो उस क्लास में चला गया। उसके बाद डायरेक्टली वो क्लास खत्म होने के बाद वो दूसरी क्लास में चला जाता है, जाता है कि नहीं? उसके बाद उसकी क्लासे खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली घर चला जाता है आफ्टर हैविंग द बाग दौड़ ऑफ ट्यूशंस ऑल द टाइम एंगेज विद बुक्स। को ये चीज है कि वो कहते ना कि सोशल लाइफ उसकी खत्म हो गई है। सोसाइटी में एक बच्चे का उठना बैठना, सोसाइटी वालों का वो कहते ना कि उस पे नजर रखना, वो बहुत कम रह गया है।
0: जी, और एज अ टीचर अगर हम आपसे जानना चाहें, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, शाम को वो वापस आता है और वो अपनी ही दुनिया में मस्त है। शायद पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चे की देखरेख उस तरीके से करे जिस तरीके से करनी चाहिए, और टीचर्स का ये है कि वो भी अपने जॉब एज टीचिंग जॉब 4 बजे तक उनका ख़त्म होता है, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आपने, मैंने जैसे आपको बताया कि आप एक माँ भी हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं, तो ये बैलेंस कैसे बरकरार रहेगा?
1: साहिल साहब देखें, आपके हम भी कहते हैं कि पहला जो दर्शिका होता है वो घर से ही स्टार्ट होता है।
0: बिल्कुल,
1: ठीक है ना, माँ सबसे बड़ा दर्शिका, माँ की तालीम सबसे बड़ा हिल,
0: बिल्कुल,
1: बाप की परवरिश सबसे बड़ी परवरिश। ठीक है, बच्चा तो सबसे ज्यादा वक्त स्पेंड घर में ही करता है ना। आजकल के जमाने में बींग ए मदर, बींग ए टीचर, मैं आपको ये बताऊंगी कि जिस बच्चे की अच्छी तरबियत घर में हो जाती है ना, वो सोसाइटी में डील भी अच्छी तरह से करता है।
0: वो स्कूल में भी अच्छा होता है।
1: मैं आपको बताऊंगी कि आजकल के

0: जमाने में बैलेंस होना चाहिए, रिलीजियस नॉलेज एज वेल एज यू हैव दुनियाई नॉलेज.
1: बिल्कुल
0: ठीक है ना, दुनियाई दीनी तालीम
1: दोनों बैलेंस
0: बराबर बैलेंस होनी चाहिए. उससे क्या होगा कि जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में खराबियां कम हो जाएंगी, क्योंकि जब उनको घर से ही सिखाया जाएगा कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, वो वैसे ही चलेंगे. आई विल गिव यू एग्जांपल, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको घर में पढ़ाई का माहौल तो नहीं होता है, लेकिन वो सोसाइटी में एक्सेल कर लेते हैं.
1: बिल्कुल मेहनत करते हैं,
0: मेहनत करते हैं. मैं आपको बताऊंगी घर का जो माहौल है उसको देख के उनको ये लगता है दैट वी आल्सो वांट टू बी द इन द फ्रंट.
1: राइट राइट, वो भी वो फैमिली में वो रोल मॉडल्स बनना चाहते, एग्जांपल सेट करना चाहते.
0: मैं आपको बताऊंगी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस्ताद को देख के कहते हैं कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार काश मैं भी अपने उस्ताद की बुलंदी तक.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और पहले जमाने में जब हम स्कूल जाया करते थे, मैं बात कर रहा हूँ जब हमारा स्कूल कॉलेज था 2000 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, हम ये सोचते थे कि जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, मुझे बड़ा होके इन जैसे बनना है, इन जैसे चलना है, इन जैसे कपड़े पहनने हैं, इन जैसे इज्जत कमानी है. क्या आज की डेट में भी स्कूल्स में ऐसा है? क्योंकि आप 10+2 हायर सेकेंडरी में हैं, जहाँ पे बच्चे नो बालिग होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं जिनको फहम होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, वो जिंदगी के उस कगार पे होते हैं जहाँ से उनको अपनी उड़ान आगे बढ़नी है. तो क्या वो भी ये सोचते हैं, समझते हैं कि हमें अपने उस्ताद जैसा बनना है, कि कहीं ना कहीं आपको चेंज लग रहा है अपने स्कूल डेज और आज के स्कूल?
0: साहिल साहब, मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि नहीं, बिल्कुल जी, यो कहते ना कि वो माहौल कहीं तो चेंज हुआ है. कहीं तो चेंज हुआ है, लेकिन व्हेन अ टीचर इज गोइंग टू फोकस,
1: बिल्कुल
0: वो अपने सब्जेक्ट पे फोकस करेगा, वो अपने स्टूडेंट पे फोकस करेगा, वो अपने क्लास पे फोकस करेगा. मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे में खराबी है. बच्चा खराब नहीं,
1: नहीं बिल्कुल,
0: वो तो मैच्योर ही नहीं होता ना पूरी तरह से, उसको खराब कैसे कहेंगे. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ अ टीचर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ द फैमिली.
1: बिल्कुल,
0: कि वो उनको उनके सेटअप में बहुत मदद करें. मैं आपको बताऊंगी घर में सुबह बच्चा उठता है, उसको बताओ इफ ही और शी इज बिलोंगिंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी, उसको बताओ कि आपको सुबह उठ के क्या करना है, पहले रब के सामने सर झुकाना है.
1: या किसी भी रिलीजन के साथ है,
0: शी इज रिलेटेड विद सिखिज्म और हिंदुइज्म, उनको बताओ, क्योंकि हर एक मजहब ये कहता है कि पहले रब है उसके बाद सब है.
1: बिल्कुल, क्या बात है.
0: ठीक है ना,
1: अगर हम ये कहें कि जो इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, व्हाट आई हैव सीन, जितने भी बच्चे हैं एवरीबॉडी इज टैलेंटेड इन वन और द अदर वे. हर किसी इंसान को ऊपर वाले ने कोई ना कोई चीज दूसरे से जुदा दी है, अलग दी है, जिसको वो लाइफ में आगे बढ़ा के उस पर सही तरीके से काम करके कामयाब होता है. कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई किसी की आईक्यू लेवल बहुत अच्छी है. तो इस टैलेंट को चैनलाइज करने की जरूरत है, और ये चैनलाइज या तो घर में माँ बाप करते हैं, और फाइनली जो ज्यादा जिम्मेदारी मुझे लगता है स्कूल में इस टैलेंट को चैनलाइज करना और सही रास्ते पे लाना, ये एक उस्ताद की जिम्मेदारी है. तभी वो बच्चा जाके आगे कामयाब होता है और एक्सेल करता है. क्या आपको लगता है कि उस टैलेंट को चैनलाइज करने में कहीं पे चूक हो रही है?
0: हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है. साहिल जी देखिए, आपसे मैं एक बात कहूंगी, इफ द स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन द मेडिकल स्ट्रीम, उसको आप सपोर्ट दें, ना कि उसको ये बताएं नो पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट स्ट्रीम, आप ये ना ले. इफ द स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन नॉन मेड, और उसका कोई बच्चा ऐसा है उसको फोटोग्राफी बहुत अच्छी लगती है, कोई बच्चा ऐसा उसको आर्ट एंड कल्चर अच्छा लगता है, कोई बच्चा ऐसा उसको म्यूजिक अच्छा लगता है, जिस चीज में वो आगे जाना चाहता है उसमें सपोर्ट बन के रहें आप. उस्ताद को भी चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए, क्योंकि वो उसी फील्ड में एक्सेल ज्यादा करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है. व्हेन यू हैव इंटरेस्ट इन समवन, तो ऑब्वियसली आप उसमें मेहनत भी करोगे, ऑब्वियसली उसमें वो एक्सेल भी करेगा, बनिस्बत वो चीज हम करें जो हमारा हमारे इंटरेस्ट में नहीं है. सिंपली आई विल गिव यू एग्जांपल, वी हैव स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आल्सो, एक बच्चा था छोटा सा था, तो ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. तो आगे आगे चला थोड़ा सा, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था दैट इज आल्सो रिलेटेड विद द म्यूजिक. हाँ, तो स्कूल में वो आया, स्कूल में भी वो जब भी हमारा कोई प्रोग्राम हुआ करता था, He always try to be there in the program. वो आता था उस प्रोग्राम में, लेकिन अल्लाह ताला का फजल और करम ऐसा है कि वो बच्चा नेशनल लेवल तक गया.
1: क्या बात,
0: नेशनल लेवल तक गया, और अल्लाह ताला का फजल और करम ऐसा था कि उस्तादों की गाइडेंस में उसने पढ़ाई भी अच्छी तरह से की,
1: और अपना पैशन भी फॉलो किया,
0: अपना पैशन भी

0: फॉलो किया, और आज आप देखेंगे कि वो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर चुका है और अल्लाह ताला सुन फजल हो इतने कि उसने फनकारे कश्मीर का अवार्ड भी लिया।
1: क्या बात है। और यही है कि जब आप टैलेंट को सही तरीके से चैनलाइज करते हैं,
0: इट डजंट मीन कि आप लोग ये बताएंगे देयर आर ओनली डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, उसके अलावा फील्ड्स बहुत ज्यादा। आप बच्चे को अच्छा शहरी बनाए, उसको जिम्मेदार शहरी बनाए, उसमें अच्छी तरबियत पैदा करें। उस्ताद का काम तो वही है ना, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक द हेल्दियर पर्सनालिटी इन द सोसाइटी, देन एंड देन वी कैन से दैट द सोसाइटी इज एक्सेलिंग।
1: जी बिल्कुल,
0: तभी तो सोसाइटी बनेगी ना।
1: हुमैरा जी, आप बहुत स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं और आपको ये भी मौका मिलता है कि आप उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं, कभी स्कूल्स में जब पेरेंट्स आते हैं, पीटीएम्स होते हैं या कोई इवेंट होगा या किसी बच्चे ने कोई शरारत की, उसके माँ बाप को बुलाया, उसके फादर को बुलाया। और आज की डेट में अगर हम स्पेशली अक्रॉस द वर्ल्ड देखें या फिर हम कश्मीर पर आए, बच्चों की जो ओवर पैम्परिंग है, घर में लाड प्यार है माँ बाप का हद से ज़्यादा, जो चीज़ वो मांगते हैं उससे दुगना उनको देते हैं छोटी उम्र से ही, और आगे चल के ये होता है कि वो बच्चे बिगड़ जाते हैं और उनको कंट्रोल करना फिर मुश्किल होता है, और फिर वही स्कूल में भी इंडिसिप्लिन करते हैं, और जब वो न घर में होंगे न स्कूल में होंगे, किसी मार्केट में होंगे, सोसाइटी की किसी कॉलोनी में होंगे, किसी ग्राउंड में होंगे, अपने दोस्तों के साथ होंगे, तो इमोरल एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती है क्योंकि उन पर किसी का कंट्रोल ही नहीं रहता। क्या आपने ये महसूस किया है कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है?
0: बिल्कुल ठीक करने की ज़रूरत है, क्यों नहीं ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन ये मैं बताऊंगी, एज अ टीचर मुझे लगता है कि बच्चों में कमियां नहीं है, बच्चों में कमियां नहीं है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स में भी कमी है और कहीं ना कहीं उस्ताद में भी कमी है। जब उस्ताद अपना अच्छा देगा ना, बच्चा कभी ख़राब ही नहीं होगा। जब टीचर अपना बेस्ट देगा, बच्चा कभी ख़राब नहीं होगा। मैं आपको ये बताऊंगी, अनमोल्डेड क्ले होता है बच्चा, जैसा शेप देंगे वैसा वो बनेगा।
1: तो टीचर की जो आपने बात की, जो 100% एक टीचर की अकाउंटेबिलिटी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप स्कूल में आए, क्लास पढ़ाई, टीचर की बहुत जिम्मेदारी है। और ऐसा भी है, आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमारी सोसाइटीज़ में ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सुबह घर से निकलते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं अपने बच्चों के पढ़ाई के खर्चे के लिए, और उनको इस भरोसे स्कूल भेजते हैं कि ये टीचर मेरे बच्चे का मुस्तकबिल संवारेगा। और उस टीचर की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी ईमानदारी के साथ उस खून पसीने की कमाई की मेहनत को कहीं पे वो कशीर पर ना बुट खा ले, और ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो गैप है हम देख रहे हैं, ये बहुत हद तक बढ़ रहा है, इसको कहीं पे कम करने की या तो शायद कोशिश नहीं हो रही, या अगर कोई कर भी रहा है तो नहीं हो रहा है, जिसके एडवर्स इफेक्ट्स हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं, चाहे कितने भी इमोरल एक्टिविटीज़ हैं। फिर वहीं पे बात आती है, ये कह मैं गारुक शीकत सुकूल शुपारान ये क्या गो साइन सोसाइटी, फिर हम घर में सीना पीटते हैं कि मन साइन बचन क्या गो। मैंने पहले ही बताया, आप खुद माँ हैं, एक टीचर है, तब आप क्या सोचती हैं कि जब ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, या आपको लगता है कि इसको हम किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एट द अर्लीस्ट?
0: देखो, आपको मैं एक चीज़ बताऊँगी कि जब बच्चा है ना, मैं फिर से एक बात बताऊंगी कि बच्चा जो होता है कि इच्छु ना समर के स्टार्ट पैठन, मगर इसको बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। किसी जगह जब बच्चा आपको किसी चीज़ पे फोर्स करता है, बनिस्बत एक ये इस कारण टॉर्चर, अगर ये मोहब्बत सान समझाओ नहीं ना,
1: बिल्कुल
0: अगर ये मोहब्बत सान समझाओ नहीं, मैं बस सुशु ज्यादा बेहतर क्या इशु बेहतर, उस मोहब्बत लैंग्वेज सुच बच समझा दस्ती।
1: बिल्कुल,
0: और जितना प्यार मोहब्बत के साथ आप बच्चे के साथ पेश आते हो ना, उतना वो प्रेजेंट सिनेरियो जो है ना उसके सामने, उसको अंडरस्टैंड जल्दी कर लेता है, इन कंपैरिजन टू नहीं आई कांट डू, मैं वो नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, नहीं इसमें तो कुछ है, मेरा पेरेंट ऐसा क्यों बोल रहा है, अगर इसके पास है देगा क्यों,
1: देगा क्यों नहीं?
0: दूसरा प्यार मोहब्बत,
1: सो वी हैव टू मेक हिम और हर अंडरस्टैंड।
0: आई विल गिव यू एग्जांपल हियर। तो मेरी बेटी पिछली बार बैठी हुई थी, तो शी केम फ्रॉम द स्कूल, मामा के मेरा जो शू है कट गया है, तो उसके पापा जो है उन्होंने बोला कि चलो हम मार्केट जाते हैं, तो इसके लिए हम शू नया लेके आते हैं। तो मैं तो बस मिजना जोर अच्छा लो बूट अनिश कहीं इन वो स्मूच अनिश आकर टेब रसा दे क्या इज यूथी बच्चे ये बूट लागी या टेब आइस एमिस तारी ई फिक्र ना म्यान अस कडन सथी ना शुन सॉरी
1: पापा
0: कहीं अत खतरा चु जखन ते क्या है। मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि वो पेरेंट, जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है जिनकी अर्निंग बहुत लिमिटेड है, मजूर बाप ऐसे आसान ज्यादा रुपये पांच हाथ शाम अयाल लागान गरस
1: दो
0: लाभ पकना, we as in

0: चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने ज्यूरिंग माई पीरियड देखा है, स्टडिंग पीरियड, जो मेरा एकेडमिक करियर रहा है, जो मैंने देखा है ना, तो उससे क्या होता है कि एक लेसन मिलता है. फिर जिन चीज़ों की कमियाँ मैंने फेस की, बहिस्तित उस्ताद, बहिस्तित माँ, मैं ये कोशिश करूँगी कि जिसको मैं पढ़ाती हूँ या जिनको मैं दर्स देती हूँ, जिनको मैं पालती हूँ, वो उन चीज़ों से फ्री रहे. जहाँ पे मुझे लगा कि मुझ में कुछ वायलेंस जैसा आ रहा था जब मैं छोटी थी, तो मेरे को वो चीज़ें नहीं मिल रही थी, फिर मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया, मैंने तो कंट्रोल किया था. यहाँ मैं ये कोशिश करती हूँ कि इनको मैं कैसे हैंडल करूँ.
1: हाँ, क्या बात,
0: इनको कैसे मैं हैंडल करूँ. क्योंकि अल्लाह गवाह, जब मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया, खुदा की कसम, कभी मैंने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों से कम नहीं समझा.
1: क्या बात है,
0: कभी भी मैंने कम नहीं समझा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर हमेशा मैं उनको अपने सीने के साथ रखती हूँ. ये समझ के कि उनके पेरेंट्स ने हमें सौंपा है,
1: भरोसा किया है,
0: हम पे भरोसा किया है, 9 बजे से लेकर 4 बजे तक इनका बच्चा हमारे पास है, तो शायद मैं माँ का रोल वहीं पे निभाऊं. मैं तो घर नहीं जाऊंगी ना कि हर एक बच्चे के घर नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आई हैव 4, 5, 6, 7 और 60 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, लेकिन ड्यूरिंग माय क्लास आई एम अ टीचर, आउटसाइड द क्लास आई एम अ फैमिली. सो हाउ आई हैव टू बिहेव, हाउ आई हैव टू बिहेव आउटसाइड द क्लासरूम. इस बच्चे को पूछो, आज आपका मूड अच्छा नहीं था, क्या बात है, कहीं आपको घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, आज मामा ने ऐसा किया, आज मामा ने. बहरहाल वो तो आपकी माँ है, वो तो करेगी, लेकिन आपका, आप तो बच्चे हो, आपको चाहिए कि, आपको हुक्म इलाही है, आपके माँ के पैरों के नीचे आपको जन्नत दिया गया, जो अपनी माँ से माफी मांगो.
1: सो बातों बातों में ही वो मॉरल एजुकेशन उनको
0: मिल जाता है. आप देखें, प्यार बांटो प्यार मिलेगा, तरबियत बांटो अच्छी तरबियत मिलेगी, आप अच्छा इल्म बांटो, इल्म वाला बंदा सामने खड़ा हो जाएगा. और जब वो सोसाइटी में वो सब चीजें हो जाती है ना, आप देखोगे क्राइम, बुरी आदतें, नशा मुक्त भारत के बारे में आज हम बात करते हैं, कुछ नहीं रहेगा. ये देखेंगे आप, पीस एंड हारमोनी यू विल फाइंड ईच एंड एवरी साइड. बच्चा खराब नहीं होता है, जब बच्चे के साथ कभी नाइंसाफी होती है, बच्चा कुछ चीजें करने के लिए मजबूर हो जाता है. आपको पता होगा कि आजकल के बच्चों में पेशेंस बहुत कम है. घर में पेरेंट डांटता है, डायरेक्ट से सुसाइडल केसेस आ जाते हैं आगे. मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी, बींग अ मदर, मैं भी पेरेंट हूँ, आप बच्चों का समझे, आप बच्चों को समझे. जितना आप बच्चों के साथ अच्छी तरह रहेंगे, जितना कोऑपरेटिव आप रहेंगे, आप देखो उतना सबसे आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, स्कूलों का माहौल भी अच्छा रहेगा. बहिस्तित टीचर कर्ब टीचरंत रिक्वेस्ट, बच्चों को अपना बच्चा समझे. ये ना कहें कि मेरा तो, मैं तो टीचर फिजिक्स का हूँ, मैं तो टीचर केमिस्ट्री का हूँ, मेरा सिर्फ फोकस उन दो क्लासों पर रहना चाहिए. नहीं, बहिस्तित उस्ताद, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी उस्ताद बन के आए, पैगंबराना पेशा कहा गया. पैगंबराना पेशा मामूली पेशा थोड़ी है,
1: ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है.
0: बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. ऑल अराउंड डेवलपमेंट बच्चे में देखो, उसको खेलने के लिए भी ले जाओ, उसके साथ बैठ के आप बातें भी करो, उसके साथ आप खाना भी खाओ, उसको आप घूमने भी ले जाओ, उसके साथ कभी आप मिल बैठ के ना, वो कहते ना कि पेरेंट की तरह बात भी करो. क्लास में डिसिप्लिन रखने के लिए वहीं से तो उस्ताद उसके साथ खड़े भी रहो, आप देखो बच्चा कैसा बनेगा. कल आपने देखा कि कुछ बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया, और उन बच्चों ने किया कि जो फर्स्ट लर्नर्स ऑफ द फैमिली है.
1: बिल्कुल,
0: तिमन ओस न गरस मस परनाम न बाप कहाँ ट्यूशन, तिमन ओस न कहाँ सु यूस इस वनो की इमन गो गरस मस अन का दर्स दिन खत, तिमन तोर पैनिस मोइलिस माज हुन मोहिम फेकरे, तिमो को रीड. अब ऐसा कोई बच्चा है ये मिस मस मेच्योरिटी बढ़िया दस्ती छ कहाँ बच्चा सन क्यों यूस न बड़ा बड़ा छ मगर मेच्योर छ गसन क्यों सुजा सन शुरू. बहरहाल अल्लाह ताला, मैं बताऊंगी कि अल्लाह ताला के फजल करम से जितना अच्छा उस्ताद और पेरेंट्स करेंगे ना, सोसाइटी उतनी अच्छी बनेगी. क्या उस्ताद को नेशन बिल्डर कहा जाता है, नेशन को बनाने वाला. इस नेशन को बनाने के लिए हमें बहुतों की जरूरत पड़ेगी. बहिस्तित आप, इसने मुझे, आप लोगों ने इस टाइम मुझे यहाँ पे बुलाया, ये बात बहुत लोगों तक जाएगी. मैं तो हर एक घर में नहीं जा सकती थी, बहिस्तित आप लोग ये बात आके जाएगी, तो आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा इसके अंदर.
1: बिल्कुल, ये कड़ी बनती है, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये आवाज पूरी दुनिया
0: तक. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, अगर टीचर बात करता है लेकिन आवाम तक तो आप पहुंचाने वाले हैं ना, तो आप भी तो एक पिलर बन गए ना इसके, सोसाइटी एक पिलर,
1: हिस्सेदार बन गए,
0: हिस्सेदार आप भी बन गए. सो इट इज अ जॉइंट वेंचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल साइड्स. मैं आपको बताऊंगी, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम जो है बहुत सपोर्ट करती है. स्कूलों में प्रोग्राम्स अलग अलग, जिन जगहों पे कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाता है. हमारी मिनिस्ट्री को इस टाइम लेके, कल हमारे सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल गसन तीस चैंपियन के प्राइवेट स्कूल गसन तीस आसे कि

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: सुहानी शाम।
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर

जिगर, चैन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार लेकिन एक बार।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: चाहूंगी शोर बचाओ, ओ मुए, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी, हो नटखट, हो खटपट, हो पनघट, हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना, ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना, हाय हाय मीठे बहना।

0: चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

हम थे वो थी और समार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की फॉरेस्ट एजेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।